ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आधारित है पार्श्व गायक सुमन कल्याणपुर पर। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी।
3: आप सुन रहे हैं 90.0 FM MHz पर रेडियो वितस्ता। पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। सभी दोस्तों को किरनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आवाज की जिसे सुनते ही दिल में एक सुकून महसूस होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी की। उन्होंने अपने सुरीले गानों से हमेशा हमें बहलाया है और आज हम उनके सफर को सुरों के जरिए याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके जीवन के पहले पड़ाव से।

सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका बांग्लादेश तब पूर्वी बंगाल में हुआ था। वह बाद में अपने परिवार के साथ मुंबई चली आई जहां उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही सुमन को संगीत का शौक था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और शंकर राव सुप्रे और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से संगीत का गहन अध्ययन किया। 1954 में सुमन ने अपनी गायन करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी मंगू और पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल था, जिसके बाद उनकी पहचान बनी।

सुमन की आवाज को मधुरता और शुद्धता के लिए जाना जाता है। उनकी आवाज को लता मंगेशकर के सम्मान माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई हिट गाने दिए, जैसे न तुम हमें जानो, दिल एक मंदिर है और तुमसे ही हसी मुलाकात हो गई। इन गीतों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। सुमन को अक्सर लता मंगेशकर के साथ तुलना की जाती थी। उनके गायन का तरीका और आवाज की टोन लता जी के सम्मान थी, जिससे उन्हें दूसरी लता भी कहा गया। सुमन ने एसडी बर्मन, नौशाद, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। उनके साथ की गई संगीत रचनाएं आज भी सराही जाती है।

सुमन की गायन शैली शास्त्रीय संगीत पर आधारित थी, लेकिन वे अन्य शैलियों में भी निपुण थी। उनकी गायकी में एक सरलता और सहजता थी जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। सुमन ने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, कन्नड़ और बंगाली भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा।

सुमन कल्याणपुर का विवाह राम कल्याणपुर से हुआ था, जो कि एक व्यवसायी थी। वह अपने पारिवारिक जीवन और संगीत करियर के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रही। सुमन ने लगभग 4 दशकों तक हिंदी फिल्म संगीत में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी लोकप्रियता 1950 से 1970 के दशक में अपने चरम पर थी, लेकिन वे 1980 के दशक में भी गाती रही।

आप सुन रहे हैं 90.0 FM मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अभी जारी है कार्यक्रम सुनहरे पल। 1980 के दशक में सुमन कल्याणपुर ने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपनी पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने लाइमलाइट से दूर एक शांत और साधारण जीवन चुना। फिल्मों के अलावा सुमन कल्याणपुर ने रेडियो पर भी कई कार्यक्रमों में भाग लिया और लाइव परफॉर्मेंस दी। वह संगीत कार्यक्रमों में अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को मंत्र मुग्ध करती रही।

सुमन कल्याणपुर ने अपने समकालीन गायकों के बीच भी सम्मान प्राप्त किया। उनकी सरलता और संगीत के प्रति समर्पण ने उन्हें संगीत जगत में एक आदरणीय स्थान दिलाया। उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहना पसंद किया और मुंबई में एक शांत जीवन बिता रही है। हाल के वर्षों में वे सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई दी है और ज्यादातर अपने परिवार के साथ समय बिताती है। उनके फैंस उन्हें आज भी उनकी मधुर आवाज और अविस्मरणीय गीतों के लिए याद करते हैं। सुमन कल्याणपुर को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। हालांकि उन्हें कई बार मुख्य धारा में उतनी पहचान नहीं मिली जितनी की हकदार थी, फिर भी संगीत प्रेमियों के दिलों में उनकी खास जगह है।

दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी के गाने आज भी हमारे दिलों में एक नया रंग भर देते हैं। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो कभी पुरानी नहीं होती। उन्होंने अपने सुरों से हमेशा हमें प्रेरित किया, हमें प्यार सिखाया और जिंदगी की हर पल को खूबसूरत बनाया, चाहे वो उनके सोलो गाने हो या ड्यूट्स। उन्होंने हर तरह के गानों में अपनी छाप छोड़ी है। उनका सफर किताबों के पन्ने जैसा है, जिसमें हर पंक्ति एक याद है। आज के प्रोग्राम के माध्यम से हमने उनकी यादों को ताजा किया। आप सभी का शुक्रिया जो आपने अपने वक्त दिया और सुमन जी के सुरों का लुत्फ उठाया।

इसके साथ ही आज का ये खास प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए सुर के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुरीली यादों के साथ खुश रहिए। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आपने सुना पार्श्व गायक सुमन कल्याणपुर के ऊपर आधारित। प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त RJ शिवानी और आज फिर आपसे रूबरू हुई हूं एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है जीवन में कभी हार ना माने। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों तक जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया, चूंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुएं में दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जैसे ही बैल को समझ आया कि यह क्या हो रहा है, वह जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। वह सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी फावड़े से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ आता। जल्द ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर भाग गया। ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी। जीवन में हर तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा। कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा। कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्तों को अपनाता हुआ दिखाई देगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध है। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना, बल्कि साहस के साथ हर चुनौतियों को हरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिए। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास, सबसे बड़ी दवा है हंसी और आश्चर्य की बात है कि यह सब कुछ निशुल्क है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है और मुसीबतों से लड़कर सदैव आगे बढ़ना है। इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुनते रहिए 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। जय हिंद, जय भारत।

वो देखो चांद निकल आया है, शायद जमीन पे उतरने का इरादा है। हमारी राहें मुनव्वर होंगी, अंधेरे अब दूर हो जाएंगे। अब रोशन होगा यह जहां और हम ढूंढेंगे वो चेहरे जो गुम हो गए थे बरसों पहले।

चांदनी रातों के बाद एक ऐसी ही सुबह का इंतजार रहता है जो मेरे लिए गुलाबी सुबह बन जाए। आओ आओ तुम्हें इन बर्फीली हवाओं का एहसास कराएं। चल मेरे साथ कोहसारू के उस पार जहां पल भर के लिए अब मर जाएं।

चुपके चुपके तुम्हें निहारता रहा देर तक। मेरे आगोश में कभी पनाह तो लीजिए जरा, शायद सिमट जाए इस शब की तन्हाई।

खुशबू का एहसास दिलाती हो और छोड़ जाती हो वीरान पत्थरों की बस्ती में। इकरार भी करते हो और लौट के आते भी नहीं हो, चंद फासले ही दरमियां, पर फिर भी दूरियां मिटती नहीं।

खूबसूरत रंगों से सराबोर जिंदगी के हैं मुख्तलिफ रंग। छू कर तो देखिए जरा, इन्हीं रंगों से महकेगी आपकी दुनिया। वो जो पीछे छोड़ आए सतरंगी दुनिया, भला उसे याद करने की जरूरत ही क्या। पर उसे आप दिल के निहाखानों में महफूज तो रख सकते हैं।

मौसमों का बदलना अपनी जगह सही है, और यही वजह है तभी शायद कायनात का संतुलन बरकरार है। अब जरा आप महसूस करिए मौसम बहार की आमद। हवाओं में ताजगी कहीं से गिरते आबशारों से निकलता मधुर संगीत, और मुसाफिर चलते जीनत बनाते पगडंडियों की कच्ची फिसलती रेत पे अपना रास्ता बनाते राही, हमराही के संग मंजिल की तलाश में बेपरवाह होकर यही सोच लिए छू जाएंगे अब

0: दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आज के कार्यक्रम से इजाजत। नमस्ते।
1: You're enjoying 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

प्रस्तुत है कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 13। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है जिंदगी के हसीन लम्हे। कार्यक्रम लिखा और प्रस्तुत करता आरजे किरने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, निर्देशन भारत सोपोरी का।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक खास सफर में जिसका नाम है पहलू और गीत। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी और आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज के प्रोग्राम का पहलू है जिंदगी के हसीन लम्हे। आज हम बात करेंगे जिंदगी के उन यादों की जो कभी दोस्तों के संग हसीन थे, कभी खुद के संग तन्हा थे और कभी किसी खास गीत में सिमट गई थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यादों के इस सफर की पहली कड़ी और ये है सुबह की पहली किरणों की बात। क्या आपको वो सुबह याद है जब आपने अपनी पहली सफलता का सूरज देखा था, या वो दिन जब एक नए शहर में नए सपने लेकर सुबह की पहली किरण ने आपको जगाया था। सुबह की रोशनी सिर्फ आंखों को नहीं जगाती, ये दिल के अंदर एक नई उम्मीद जगाती है। सुबह की पहली किरण एक नई रोशनी लाई, सपनों के इस शहर में एक नए राग बनाई, मिट्टी के रंगों से भर दे जिंदगी के कागज और हर मोड़ पर एक नई मुस्कान छुपा जाए।

बचपन के वो दिन जब गुड़िया के घर बनाते थे और चेहरे पर मुस्कान होती थी, वो दिन सच में अनमोल थे। या वो पहले दोस्त जिसे आज तक याद करते हैं। बचपन सिर्फ एक याद नहीं, जिंदगी का एक सबसे खूबसूरत पहला रंग है। मिट्टी के घर और सितारों के सपने, बचपन के वो दिन जो खुद से बेचैन थे अपने, न चिंता थी कल की न डर कोई हार का, बचपन के वो दिन सिर्फ प्यार के थे, प्यार का।

बरसात सिर्फ पानी नहीं, यादों का एक सिलसिला है। पहली बार जब बारिश में भीगते वक्त अपनी जिंदगी को महसूस किया था, या वो बरसात जब अपने अपने दोस्त के साथ चाय की प्याली शेयर की थी। हर बूंद के साथ एक नई कहानी बनती है। बूंदों की बातें दिल को सुकून दे जाए, मिट्टी की खुशबू में कुछ बातें छुपाए, बरसात हर दिल में एक नई चाहत जगाए, जिंदगी को गीतों के साथ सुलझाए।

मोहब्बत का पहला एहसास हमेशा यादगार होता है। वो पहली बार जब दिल की धड़कन तेज हुई थी, या वो पहला खत जो आपने किसी के लिए लिखा था, ये एहसास जिंदगी भर के लिए दिल में बस जाता है। मोहब्बत का पहला एहसास एक नई दुनिया दिखाए, हर लम्हा एक नए सपने में ढल जाए, दिल की बातें आंखों से कह दे और गीत बनकर हर रात सुने।

आँखों की बात करते हैं तो ये अपनी कहानियाँ छुपाए रखती है। आँखों में जो कुछ होता है वो शब्दों से ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। आँखों की गहराई में हमारी फीलिंग्स छुपी होती है और अक्सर हम जो नहीं कह पाते वो आँखों के जरिए सबको दिखाई देती है। आँखों की चमक में दिल की बात छुप जाती है। कभी खुशी तो कभी गम की एक कहानी मिल जाती है।

दिल में हर एक एहसास, खुशी, गम, प्यार और दर्द छुपा होता है। दिल की बात करते वक्त हम अपनी असली फीलिंग्स को समझते हैं, चाहे वो खुशियां हो या छुपी हुई उदासी। दिल का एक खास रंग होता है जो कभी खुशियों से चमकता है और कभी उदासी से धीरे धीरे मुरझा जाता है। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। खाली दिल हम भी सुनाते, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया।

इसके साथ ही पहलू और गीत का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं? आप अपना फीडबैक दे सकते हैं मोबाइल नंबर 7056413010 पर। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 13। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था जिंदगी के हसीन लम्हे। कार्यक्रम को लिखा और प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
0: पेश है कार्यक्रम नारी एक दर्पण, एपिसोड 3। आज के मेहमान हैं ऐश्वर्या धीमान और ज्योति बगन। प्रस्तुतकर्ता आरजे सेजल। निर्देशन भारत सोपुरी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सेजल, आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नारी एक दर्पण के तीसरे अंक में। पिछले दो अंकों में हमने बात की उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने समाज की बेड़ियां तोड़ आसमान की ऊंचाई को छुआ, महिला और बाल विकास की ओर काम किया, साथ ही साथ देश को उन्नति के मार्ग पर लेकर गई और आज की पीढ़ी के लिए एक मिसाल के रूप में या कह लीजिए कि एक प्रेरणा के रूप में रूबरू हुई। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम आज की पीढ़ी को ही लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे समाज के महिलाओं की तरफ बदले रुख की, महिलाओं को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आज के युवा किस प्रकार सफलता को पा सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो युवतियां जो अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं और अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, एक जो बिजनेस वुमन है और गृहिणी भी, और एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आज की आत्मनिर्भर युवती भी। तो ज्योति और ऐश्वर्या, मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सेजल हमें इनवाइट करने के लिए।
2: थैंक यू सेजल, एक्साइटेड।
0: हम आप दोनों से बात करेंगे ताकि हमारे श्रोता आप दोनों को सुन पाए और जान पाए। तो शुरुआत करते हैं ज्योति आपसे। मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ जानकारी दें।
1: हेलो, मैं ज्योति बग्गल हूँ। मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग अम्बाला कैंट से की थी। देन मैंने अपना कोर्स किया चंडीगढ़ से वेब डिजाइनिंग का, प्रो डेवलपमेंट का। तो फिर उसके बाद मैंने मेकअप का भी कोर्स किया है और बाद में फिर मैंने मेकअप में फ्रीलांसिंग की है। एंड देन फिर मैं फिर से अम्बाला आ गई, फिर अम्बाला में आकर फिर उसके बाद शादी होगी, शादी के बाद फिर बेबी, फिर उसके बेबी के बाद मैंने अपना एक न्यू बिजनेस खोला है, उसका नाम है द वेब आर्ट। और मैं रेजन आर्टिस्ट हूँ और मैं हैंड कास्टिंग भी करती हूँ, हैंड इम्प्रेशन।
0: तो ज्योति, आपने बोला रेजन आर्टिस्ट और हैंड कास्टिंग, तो आप ये बता सकती हैं, क्योंकि बहुत यूनिक वर्ड है मेरे लिए भी और शायद श्रोताओं के लिए भी, तो ये चीज है क्या?
1: रेजन आर्ट में ये होता है कि आप अपनी कुछ भी चीज, मतलब जो क्यूशियस चीज है, वो आप प्रिजर्व करवा सकती हो लाइफ टाइम के लिए। ये आपके लिए एक मेमोरी हो जाती है, ये केमिकल होता है, उसमें सब हमेशा के लिए प्रिजर्व हो सकती है अगर हम उसको इतनी ऊपर से फेंके तब भी नहीं टूटता वो। और हैंड कास्टिंग वो होता है जैसे बेबी हमारा 2 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, तो हम उसके हैंड कास्ट करवा सकते हैं। वो एक तरह से कास्टिंग होती है, वो जैसे बेबी बड़ा होता रहता है तो बड़े होकर देखेगा कि हाँ भाई ये हमारे मम्मी पापा ने करवाया था हमारा हैंड का, कितने छोटे छोटे हाथ थे हमारे और हम बड़े हो गए हैं, तो उनके लिए एक मेमोरी रह जाती है लाइफ टाइम के लिए कि हाँ हम इतने छोटे छोटे थे।
0: तो ये सारा काम आप खुद ही मैनेज कर रही हैं इस वक्त या आपकी टीम है?
1: नहीं, ये मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं। अभी हमारा स्टार्टअप है तो हमने कोई हेल्पर यहाँ से, जो हम दोनों ही करते हैं
0: जी। तो ज्योति, जैसे अभी आपने बताया कि आपने वेब डिजाइनिंग की, तो वेब डिजाइनिंग से आपका इंटरेस्ट इस तरफ कैसे शिफ्ट हुआ और ये कब आपने चीज डिसाइड की कि मुझे ये करना चाहिए?
1: जैसे वेब डिजाइनिंग से मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें एडिटिंग सिखाते हैं वेब डिजाइनिंग में, तो जैसे फोटोग्राफी आफ्टर बेबी, मैंने ना अपने बेबी का फोटोशूट किया, उसको एडिट किया, जैसे उसका नाम कीशू है तो मैंने कीशू के अंदर लेटर्स में फोटोज लगा दी, तो फिर मैंने ऐसे ही उसको फ्रेम करवा लिया, ऐसे ही मैंने डाला अपने इंस्टाग्राम पर। तो उन्होंने कहा कहाँ से बनवाया, किसी ने पूछा मेरे से कहाँ से बनवाया, तो मैंने कहा ये मैंने खुद बनाया है। तो कहते अच्छा कितने का बन जाएगा ये वो, मैंने कहा कि ये तो अभी मैंने कुछ भी नहीं, ये तो मैंने खुद ही बनाया है। तो मेरी एक फ्रेंड ने सजेशन दिया मुझे कि आपको ना ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो उससे मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। पहले तो मैं सिर्फ फोटो फ्रेम्स वगैरह बनाती थी, बट उसके बाद मैंने जैसे थोड़ा सर्च किया तो मेरे एक्सप्लोर पेज पे वो आता था, जैसे रेजन आर्टिस्ट आर्ट का, तो मैंने इतना इंटरेस्ट हो गया उसमें, तो मैंने उसमें एक साल किया पहले, तो फिर उसके बाद मैंने खुद ही ट्राई किया कि हाँ ये कहाँ से सीख सकते हैं हम, तो मैंने यूट्यूब से ना इसको थोड़ा लर्न किया काफी। शुरू में मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आई कि हाँ ये कैसे, कहाँ से सामान लाना है, कहाँ से वेंडोर वगैरह सब कुछ कैसे होता है, मोल्ड्स वगैरह, तो काफी दिक्कत आई, बट बहुत सही चल रहा है अब तो।
0: तो आप जैसे ये चीजें प्रिजर्व करती हैं, इन्हें एक तो प्रिजर्व करना भी मुश्किल है, और ये चीजें हम अपनी लाइफ में किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, और क्या क्या टाइप्स के आप प्रोडक्ट प्रिजर्व करते हैं?
1: जैसे मुश्किल, जो काम करता है उसके लिए तो मुश्किल नहीं है, बट जो देखता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब जैसे हैंड कास्टिंग है, अब बेबी जब जैसे ग्रो होता है वो वापिस तो नहीं छोटा हो सकता ना, तो वैसे ही हम उनके हैंड कास्ट करते हैं, तो ताकि मेमोरी रह जाए हमेशा के लिए, तो फिर वैसे ही हैंड कास्टिंग और वैसे ही रेजन होता है कि जैसे एक बार बेबी होता है तो उसकी कॉर्ड वगैरह होती है, प्रेगनेंसी किट होती है, बेबीज के हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, तो वो प्रिजर्व होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क प्रिजर्व होता है, और एक जैसे शादी होती है, शादी एक ही बार होती है, तो उसकी जो वरमाला होती है ना वो हम लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व कर देते हैं।

0: को करिकुलर। स्कूलिंग के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है पंजाब से, LPU जलंधर। मेरी ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग मैंने बहुत सोशल वर्क में आई वॉज एक्टिव, और मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन सोशल अपने समाज की तरफ भी दे सकूं, और रेदर देन कि मैं सिर्फ पढ़ाई में रहूं, मैंने कोशिश किया कि वहां पे भी मेरा कंट्रीब्यूशन जाए। और उसके बाद कॉलेज से प्लेसमेंट का ऑफर मिला, और मैं अपनी फैमिली से फर्स्ट कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो वेरी हैप्पी कि अभी मुझे अपनी लाइफ एक अननोन सिटी जहाँ पे मैंने एज अ स्ट्रेंजर अपना ज्वाइन किया और वहाँ पे अभी मैं सस्टेन कर रही हूँ, तो अभी यहाँ तक का सफर यही सब है।
1: तो ऐश्वर्या, मैं एक कॉमन सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि आप फर्स्ट इंजीनियर है अपनी फैमिली में से, तो ये इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ कैसे गया?
0: हाँ, तो हुआ क्या कि फिफ्थ क्लास में मेरे पापा घर पे कंप्यूटर लेके आए, तो जैसे एक छोटे से बच्चे को क्यूरियोसिटी होता है कि हमें एक्सप्लोर करना है कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने शुरू तो पेंट से किया या फिर गेम से किया, लेकिन वो चीज़ मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि हम इस कंप्यूटर, एक छोटी सी चीज़ है, उससे हम कुछ कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा स्टेज पे अपने उसको काम को लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक वहाँ से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट बना, और जब मेरे से कोई स्कूल में पूछता था कि आपका क्या गोल है, बड़े होके क्या बनना है, तो मैं यही बोला करती थी कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो आई थिंक वो धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि कंप्यूटर का वर्ल्ड बहुत वास्ट है, वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग। आई थिंक बचपन से फैमिली के थ्रू इंटरेस्ट बना स्टार्टिंग में, एंड उसी के ऊपर मैंने काम किया।
1: तो आप अंबाला में ही पली बड़ी हैं, और एकदम से दूसरे शहर में जाना, वहाँ काम करना, वहाँ रहना, वहाँ का रहन सहन अपनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो एज एन फीमेल आपको क्या परेशानी आई, और एज एन पर्सन आपने अपने अंदर क्या डेवलपमेंट फील करी बाहर जाकर?
0: अगर मैं बताऊं तो पहली हर्डल तो घर पे थी, ऑल्दो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हाँ तू जा सकती है, सिटी दूसरी है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बट मम्मी की तरफ से थोड़ा सा झिझक था कि अभी बेटी छोटी है, अभी बाहर जाएगी तो कैसे सस्टेन करेगी, खाना नहीं आता बनाना, तो वो सब घर में ज़रूर था, लेकिन मुझे लगता है कि पापा की वजह से मैं बाहर गई, और वहाँ पे जाके भी बहुत हर्डल्स थे, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ वहाँ पे लैंग्वेज हर्डल था, मुझे नहीं आती थी उनकी लैंग्वेज और वो मेरे को नहीं समझ सकते थे, तो और खाना बहुत डिफरेंट है वहाँ पे, तो आई थिंक ये दो प्रॉब्लम थी। और वहाँ पे जाके फिर धीरे धीरे मैंने एडजस्ट किया कि लैंग्वेज बैरियर हटाया धीरे धीरे, वहाँ के लोगों से भी घुले मिले, ऑल्दो इंग्लिश में वहाँ पे कन्वर्स करना पड़ता है, बट वहाँ के लोगों से भी कनेक्शन बनाना शुरू किया, धीरे धीरे वो कनेक्शन बन गया, और आई थिंक अभी अच्छा चल रहा है, वहाँ पे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे अपना घर हो बैंगलोर, तो अभी वो स्टेज पे मैं आ चुकी हूँ।
1: जी, जैसे आपने कहा कि फैमिली बहुत सपोर्टिव रही इस चीज में बाहर, और फैमिलीज को होना भी चाहिए, और इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने पहली बार आफ्टर योर 12th और आफ्टर 10th आपने जब कहा कि आप परस्यू करना चाहती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो फैमिली का उस टाइम पर क्या रिस्पॉन्स रहा इस चीज को लेकर?
0: जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट था, और मैं चाहती हूँ कि हर किसी की फैमिली ऐसे ही अपने बच्चे को सपोर्ट करे, वो जो भी करना चाहता है उसके साथ खड़ी रहे, और अगर बच्चा गिरे भी तो उसको हौसला दे कि हाँ तुम खड़े होके अभी फिर से ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता है मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और उनकी वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया।
1: तो ज्योति, मैं यही चीज आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आपने पहली बार उन्हें बिजनेस शुरू करने के बारे में बताया?
2: मेरी फैमिली, इन लॉस भी बहुत अच्छे हैं, मेरी मम्मी और वाले भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बेबी को संभाला और मेरी इन लॉस ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, आजकल तो सब कर रहे हैं, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, तुम घर बैठ के क्या करोगे, तो उन्होंने इतनी हेल्प की है ना मेरी, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉस है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, और मेरी सिस्टर है जो मुझे सामान चाहिए वो ला कर देते हैं, कई बार मैं नहीं जा सकती तो वो जाते हैं, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अगर वो सपोर्ट ना करते ना तो आज मैं यहाँ तक ना आती, और हम दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है ना कि अगर ना होती तो मैं ये बिज़नेस स्टार्ट ही ना कर पाती, क्योंकि कई लोग बोल देते हैं कि तू क्या करेगी, तू घर बैठ, हम घर बैठने के लिए तो नहीं है ना, मतलब कि हमें घर के साथ साथ कुछ करना भी चाहिए।
1: जी,

0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा नारी एक दर्पण में। फिलहाल जो दो युवतियां हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उनको कौन सा गाना पसंद है और वो गाना हम अपने श्रोताओं को भी सुनाएंगे। तो ज्योति, आप अपना कोई मन पसंदीदा गाना बताएं।
1: बम बम भोले, मेरी बेटी को ना सॉन्ग पसंद है।
2: चकरक चीचा चो चकलो रंगंडो वंडो लकरक टम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाय विडी पाय चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकु रे टुकु बुकु रे चकलक बिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चकचो।

0: गाना तो बहुत ही मधुर था और बहुत ही खूबसूरत भी और शरारत से भरा भी। और अब आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं हमारे दो खूबसूरत मेहमानों के साथ। ऐश्वर्या, आपने कहा कि आप सोशल वर्क से जुड़ी हैं, तो ये नेशनल सर्विस स्कीम सोशल वर्क से रिलेटेड रहा, तो आप इससे कैसे जुड़ी और कैसे इतनी कम उम्र में सोशल वर्क की तरफ आपका रुझान गया?
1: तो इसकी शुरुआत मुझे लगता है मेरे दादाजी से हुई। तो वो हमेशा से एक देश हित भावना हमारे अंदर डालते आए हैं। तो जैसे ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, उधर हमें बहुत सारे क्लब थे जो हम ज्वाइन कर सकते थे, जैसे NCC, NSS थी। तो मुझे हमेशा से रहता था कि मैं किसी ना किसी माध्यम से अपने देश के काम आ सकूं या कुछ भी छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन कर सकूं। तो मैंने सोचा कि हम NSS ज्वाइन करते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में ही NSS ज्वाइन किया था। धीरे धीरे हमें वहाँ पे जैसे ही जुड़े, उसके अंदर हम स्लम एरियाज में बच्चे होते हैं, उनको खाना खिलाते हैं या फिर उनको कपड़े बांटते हैं। जैसे हॉस्टल में हम लोग काफ़ी जे क्या करते हैं, कपड़े ऐसे ही रखे होते हैं जो वो यूज़ नहीं करते हैं, तो हम हॉस्टल से कलेक्ट करके जो भी सामान किसी के काम आ सके वो सब कलेक्ट करके हम स्लम एरियाज में बांटने जाते थे। हमने कैंप्स लगाए हैं गांव के अंदर जाके, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को हमने कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश की है, या फिर कह सकते हैं कि वोटिंग के लिए वहाँ पे अवेयरनेस की है कि आप चाहिए, या फिर हम स्कूल में जाके कभी पेंटिंग कॉम्पिटिशन जो कि बच्चों को नेशन से जोड़ सके। तो ये सब टाइप के काम हमने NSS में किए हैं। और मुझे लगता है एक अलग तरह का डेवलपमेंट होता है जब आप ऐसी चीज़ों से जुड़ते हैं। वहाँ पे इतने तरह तरह के लोगों से आप जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है एक अलग तरह का डेवलपमेंट होता है आपके पर्सनालिटी में, एंड आप अलग तरह से निखर के आ सकते हैं उसके माध्यम से।
0: जी बिल्कुल सही कहा कि जीवन में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे आपने कहा कि बच्चों को आपने कंप्यूटर से जोड़ा, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से आपने बच्चों को इस टेक्नोलॉजी से जोड़ा?
1: तो हम लोग कॉलेज से, हमारे पास लैपटॉप होता था, तो हम लोग उसे गांव में लेके जाते थे। सब बच्चों को वहाँ पे जो भी कॉमन प्लेस होती है, तो हम वहाँ पे उन लोगों को इनवाइट करते थे कि अपने बच्चों को भेजो, हम उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो वो सब गांव से बच्चे इकट्ठा होते थे, तो उनको एक तरह से हम टीचर बन के कभी चुप कराते थे, कभी दिखाते थे कि आप पेंट कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेक्टिव वे में हम जोड़ने की कोशिश करते थे बच्चों को, कि वो सिर्फ एक गाँव में ही सिमट के ना रह जाएं, उनको पता लगे कि बाहर भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनसे वो जुड़ सकते हैं। तो बच्चों के साथ हमने भी उनके दोस्त जैसा बन के उनको सिखाने की कोशिश की है।
0: जी बिल्कुल, बच्चों के साथ एक बार खुद का भी बचपना याद आ जाता है और इस खूबसूरत दुनिया को उन्हें भी जरूर देखना चाहिए। तो ज्योति, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप भी इस तरीके के सोशल वर्क से जुड़ी हैं?
2: अभी तो नहीं, बट ना थोड़े टाइम बाद हम भी स्टार्ट कर रहे हैं कि जो बेरोजगार महिलाएं होती हैं, जो घर में होती हैं, बैठी होती हैं, फ्री, उनको भी काम दें। जैसे ज्वेलरी मेकिंग का काम होता है, तो हम उनको देंगे ताकि वो भी अपना स्टार्टअप करे, और फिर हम उनको आगे उनके प्रोडक्ट बनेंगे तो हम सेल करेंगे, हमारे पास भी एक न्यू प्रोडक्ट हो जाएगा।
0: तो अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो इसमें आप किस तरीके के प्रोडक्ट अभी प्रोवाइड करने वाली है?
2: अभी आपने कभी सुना है मिठाई कैंडल?
0: नहीं, हमने तो दूसरी कैंडल ही लिया। ये मिठाई कैंडल क्या चीज है?
2: अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो हमने एक न्यू लॉन्च किया है, लड्डू कैंडल, मोदक कैंडल, घेवर कैंडल, गुजिया कैंडल, उसमें काफी सारी वैरायटीज हैं, तो अभी हम लॉन्च करने वाले हैं वो।
0: तो ये कैंडल खाने वाली कैंडल है या जलाने वाली?
2: को देख के खाने का मन करेगा, बट वो वैक्स है, वो सो वैक्स की होगी प्योर।
0: तो ये बहुत ही क्रिएटिव चीज है और नई चीज भी है, मैंने पहली बार ये चीज सुनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो ज्योति, जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया, तो आपको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
2: जब कोई कुछ भी न्यू स्टार्टअप करते हैं, ऑफकोर्स काफी दिक्कतें आती हैं, और फिर कई बार तो कस्टमर भी हमें ट्रस्ट नहीं कर पाते, हमें
3: कस्टमर का भी ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है। बट कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर हमसे कनेक्ट करे तो हम उनसे कई बार हाफ पेमेंट करवा लेते हैं, क्योंकि फुल पेमेंट चाहिए होती है एडवांस में, क्योंकि कस्टमर अपना सामान बनवा कर भाग जाते हैं कई बार, तो ऐसे ही होता है। और फिर हमारे साथ हुआ था एक बार ऐसे, कस्टमर ने हाफ पेमेंट की, आई डोंट नो कि उनके साथ हुआ क्या था, उन्होंने अपना प्रोडक्ट नहीं मंगवाया हमसे। बट अभी तो फिलहाल हमारे पास उनका प्रोडक्ट पड़ा है अभी भी, तो वो हमने एज अ प्रमोशन यूज कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ वेस्ट नहीं है। अब मेरे पास कोई न्यू कस्टमर आएगा, वो देखेगा कि कैसा है आपका ये रेजन, होता क्या है।
0: तो आपने जैसे बताया कि इस तरीके के अपने शुरू में फेस किए, तो जो अभी नए बिजनेस में आ रहे हैं इस वक्त युवा या जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें आप क्या राय देना चाहेंगे, इससे कैसे वो बच सके?
3: बस यही बोलना चाहूंगी कि आप हमेशा एडवांस पेमेंट करवाएं और अपने कस्टमर को अपने ऊपर ट्रस्ट करवाएं कि हाँ हम सब प्रोवाइड करते हैं, कि हम फेक नहीं है, हम फ्रॉड नहीं है, हम अपनी सर्विस टाइम पे देते हैं। अगर थोड़ा लेट हो गया तो कुछ रीजन होगा इसलिए लेट हो गया, बट कस्टमर को भी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सपोर्ट करनी चाहिए कि हाँ स्मॉल बिजनेस है, होता रहता है, थोड़ा लेट हो ही जाता है। कई बार कस्टमर बोलते हैं कि आपने लेट कर दिया, थोड़ा टाइम लगता ही है हर चीज में, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है ना।
0: जी जरूर, दिक्कतें तो हर एक काम में आती हैं, बस हमें कभी हौसला नहीं हारना चाहिए। और ज्योति, आपका काम बहुत ही यूनिक है, तो क्या कभी आपके किसी कस्टमर से ऐसी कोई यूनिक डिमांड आई है जिसे आप देखकर या सोचकर ऐसा लगा हो कि अभी इसको कैसे करें हम?
3: हाँ, आई थी ऑफ कोर्स, ब्रेस्ट मिल्क आया था, सोच रही थी कैसे करूँ कैसे करूँ, फिर उसको थोड़ा सर्च किया कैसे करना है, फिर ब्रेस्ट मिल्क का पाउडर बनाया, तो फिर उसके बाद चीज बनाया, स्टार बनाया उससे, तो वो एक फ्रेम में प्रिजर्व किया।
0: अच्छा ऐश्वर्या, तो जैसे ज्योति के साथ एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ, आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट शहर में गई रहने, यहाँ के मुकाबले आपको वहाँ क्या ऐसा कोई डिफरेंस दिखा हो या कोई एक्सपीरियंस हुआ हो?
1: यहाँ पे दो बड़े रोचक इंसिडेंट हैं जो मैं बताना चाहूंगी। जैसे खाने को लेकर, तो हमारे यहाँ पे रोटी बनाई जाती है, मुझे वैसे कभी खाना बनाना मैंने सीखा नहीं इधर, लेकिन मैं बैंगलोर चली गई जॉब के लिए और वहाँ का खाना बहुत ही अलग है हमारे इधर से, तो मुझे खाने में बड़ी दिक्कत आई। तो कभी मार्केट में निकल गए सब्जी लेने, सब्जी वाले को बोला कि हमें भिंडी चाहिए, तो उनको नहीं पता है भिंडी क्या होती है, तो उन्होंने मुझे कुछ और दे दिया। कह सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे रह के मुझे खाना बनाना आ गया है, तो अभी वो चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। और दूसरा एक्सपीरियंस मैं ऐड करना चाहूँगी वहाँ की शादियों का, जो कि हमारे यहाँ की शादियों से बहुत अलग होती हैं। जैसे हमारे इधर शादियों में इतने गाने, बॉलीवुड, डीजे एंड बहुत लंबा सेलिब्रेशन चलता है, ऐसा साउथ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ बड़े ही सिंपल तरीके से लोग शादी रखते हैं और वहाँ पे ऐसे डीजे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उनका खाना भी बहुत सिंपल, केले के पत्ते के ऊपर आपको सब 10 तरह की चीजें सर्व करते हैं, और आप वहाँ पे जाके बड़ी सादगी से बैठ के वहाँ पे खाना खाइए और शादी वाली फोटो खिंचवा के, और सुबह ही आपका 11-12 बजे तक सब खत्म हो जाता है और उसके बाद आप घर आ जाओ। तो मुझे लगा कि ये बहुत प्रिंस था एक।
0: जी, नए अनुभव भी होना जीवन में बहुत जरूरी है। तो ज्योति, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में अभी हमने सुना, क्या आपका बिजनेस रहा वो भी हमने जाना, काफी क्रिएटिव प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे या कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहे तो हम किस तरीके से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं?
3: मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है @thewebart_, तो आप वहां पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, देन आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्योति, आपका काम बहुत ही क्रिएटिव है और जानकर अच्छा लगा, एक नई जानकारी मिली है आज आपसे हमें। तो ऐश्वर्या, अब हम आपकी तरफ आते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना सुनना चाहेंगे और हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहेंगे।
1: ये सॉन्ग मैं अपने नेशन के लिए टू बिल्ड इट उसको डिवोट करना चाहूंगी। मैं दो लाइनें गुनगुनाना भी चाहूंगी और चाहती हूँ ज्योति भी मुझे ज्वाइन करे इसके लिए।
4: अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना,

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर नारी एक दर्पण। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो युवतियां जिनसे हमारी बातचीत चल रही है और अब हम हमारी बातचीत को युवाओं की तरफ लेकर जाएंगे और आजकल के ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। ऐश्वर्या, आप इस वक्त आईटी सेक्टर में काम कर रही हैं और अभी हाल ही में आईटी में एक डेवलपमेंट हुई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जिसकी वजह से युवाओं के बीच इस बात की काफी चर्चा है कि एआई कहीं ना कहीं हमारी जॉब को खत्म कर सकता है, मैन पावर को खत्म कर सकता है। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है?
1: मुझे लगता है एआई को अभी काफी टाइम हो चुका है हमारे लाइफ में आए हुए, लेकिन रिसेंटली अभी चैट जीपीटी आया है। यूथ में बहुत ही डर है कि हमारी जॉब से लेके चला जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एआई और ह्यूमन दो अलग अलग चीजें हैं। कभी एआई टोटली रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, बिकॉज ह्यूमन के पास ऑब्वियसली इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी अलग होती है। तो जरूर कोई रिपीटेटिव टास्क होता है जो वो एआई हैंडल कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे यूथ को कोई डिस्करेज होने की जरूरत है। तो जो भी एआई बनाने की स्किल है वो हम लर्न कर सकते हैं, या जो भी टेक्नोलॉजी अभी ट्रेंड में आएगी वो हम यूज और लर्न कर सकते हैं, और इससे कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि इतनी जल्दी ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम नहीं होने वाला है। मुझे लगता है हाँ, जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपस्किल कर सकते हैं एंड कोई दिक्कत ऐसी खास आने वाली नहीं है।
0: जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि समय के साथ साथ खुद को डेवलप करना भी जरूरी है। और एक चीज मैं अब करियर से रिलेटेड पूछना चाहूंगी कि आज के समय में जो बच्चे हैं या किशोर हैं, वो पढ़ाई को लेकर और अपने करियर को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, या कह लीजिए स्ट्रेस ले लेते हैं उस चीज का। तो अभी आप दोनों इस स्टेज से निकली हैं, तो आपने इस चीज को कैसे टैकल किया और आज के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे टैकल कर सकते हैं इसे?
1: मुझे लगता है हम लोग स्कूल में बहुत ही ज्यादा टेंशन लेते थे, इस टेस्ट में हम फेल हो गए, जेईई एग्जाम नहीं हुआ हमसे, और ये छोटी छोटी चीजें तब हमें बहुत बड़ी लगती थी। लेकिन अगर इस स्टेज पे आके कहें तो वो सब चीजें उस टाइम पे बड़ी होती हैं, लेकिन उससे कभी डीमोटिवेट होके वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए बच्चों को। स्पेशली स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और जो भी हो जितना हो बच्चों को एल्डर से सीनियर से कनेक्ट रहना चाहिए और सोशलाइज कीजिए बाहर और चीजों को एक्सप्लोर कीजिए।
0: जी बिल्कुल। ज्योति, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: हाँ, जैसे पहले मेरे को वेब डिजाइनिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था, और फिर मेरी फैमिली भी चाहती थी कि मैं आईटी फील्ड में जाऊँ। बचपन से वैसे मुझे इंटरेस्ट था आर्ट एंड क्राफ्ट में, क्योंकि थोड़ा हमारा माइंड चेंज होता रहता है जब हम छोटे होते हैं, तो फिर हम जैसे बढ़ते रहते तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमें इसमें चीज में इंटरेस्ट है। तो जैसे हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, हम उसको दिल से करेंगे, पूरी लाइफ करेंगे, तो कोई स्ट्रेस भी नहीं होता उसमें, सो एंजॉय से मजे से काम करते रहते हैं सब।
0: जी बिल्कुल, अपनी पसंद का काम हो तो कभी बोरियत भी फील नहीं होती। ज्योति, आप एक बिजनेस वुमन हैं, साथ में मदर भी हैं, तो आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं?
2: जो मेरा बेटा है ना, वो मेरे मम्मी पापा के पास रहता है एक्चुअली, तो मैं सारा काम मैनेज कर लेती हूँ। तो मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, और वो भी मेरी हेल्प करवाता है, कई बार पैकिंग करता है वो, बल्कि 2.5 ईयर्स का है फिर भी पैकिंग में हेल्प करवाता है। तो मैं उसके आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज करती हूँ, हमारा दोनों का एक पेज भी है कि इशू एंड मम्स क्राफ्ट हाउस, तो हम दोनों वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, काफी चीजें करते हैं अलग अलग, तो वो भी मैनेज हो जाता है। और जितना टाइम मिलता है मुझे, मैं अपना काम कर लेती हूँ, घर भी संभालती हूँ, सब कुछ करती हूँ।
0: जी, इससे बच्चों का क्रिएटिविटी लेवल भी इंक्रीज होता है जब मदर उनके साथ कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज करें। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे अब भारत बदल रहा है, एक न्यू इंडिया बन रहा है, नया भारत बन रहा है, तो आपको क्या लगता है दोनों को कि इसमें महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है?
1: मुझे लगता है एज अ सोसाइटी हमें एक साथ विमेन को आगे भेजना चाहिए और पीछे से सपोर्ट पूरा देना चाहिए, ताकि वो भी इंडिपेंडेंट हो सकें और उनको ऐसा ना कभी लाइफ में फील हो कि दे आर डिपेंडेंट ऑन समवन और वो बहुत किसी के ऊपर भार हैं। तो मैं चाहती हूँ कि विमेन भी अपना इंडिपेंडेंट होके घर भी संभाल सकें और अपने आप पैरों पे खड़े हो सकें और अपने एक्सपेंसेस खुद हैंडल कर सकें।
2: जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं अपना एक वर्क शुरू करना चाहती हूँ, जो बेरोजगार महिलाएं अपने घर बैठी हैं, उनको घर बैठे बैठे उनको कुछ काम देना है मुझे, तो ऐसे ही वो खुद भी कुछ, जैसे कोई अपना टिफिन बॉक्स वाला स्टार्ट कर सकता है काम, कोई अपना जो सिलाई होती है टेलर वगैरह वो कर सकते हैं, आजकल ऊन के स्वेटर बुनते हैं वो कर सकते हैं लोग, तो आगे जा मतलब ऐसे ही थोड़ा आपको खुद भी कदम बढ़ाने चाहिए। और ना मैं कहना चाहूंगी कि हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके बिना अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते।
0: जी बिल्कुल, सपोर्ट चाहे फैमिली का हो, हस्बैंड का हो, दोस्तों का हो, हर एक पड़ाव पर बहुत जरूरी होता है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये अम्बाला कैंट का पहला रेडियो स्टेशन है, तो आप दोनों को यहाँ पर, आप पहली बार आई हैं, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा?
2: यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन अगर मेरे पापा होते, मतलब माय ग्रैंडफादर, वो ना रेडियो सुनते थे डेली, तो होते तो वो मेरा भी ये प्रोग्राम सुनते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, उनको इतनी खुशी होती है कि हाँ मैं ये सुनता हूँ तो मेरी इसमें पोती मेरी यहाँ पर आई है, उसकी आवाज आई है, वो बहुत इंटरेस्ट लेते, इतने खुश होते।
1: और मेरे पापा रोज ऑफिस जाते हुए अम्बाला रेडियो जरूर सुनते हैं, तो वो मुझे बताते थे कि ऐसे अम्बाला का रेडियो अभी मैं सुनता हूँ और बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी उनको इस रेडियो के थ्रू आवाज़ पहुँचा सकती हूँ, और मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को बताकर।
0: जी, बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में, और मैं यही कहूंगी कि चाहे वो आपके साथ नहीं है लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बातें हमारे पास करने को बहुत है लेकिन समय की हमारे पास बहुत कमी है इस वक्त, तो इस कार्यक्रम को अंत की ओर लेकर जाऊंगी और चाहूंगी कि आप दोनों जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनको एक संदेश दें, एक मैसेज दें, जो भी आप देना चाहती हैं।
2: जैसे मैं अभी एक वर्किंग वूमेन भी हूँ और होम मेकर भी हूँ, तो काफ़ी परेशानियाँ होती हैं लाइफ में भी, तो हमें उसमें से निकल करना, हमें आगे कदम बढ़ाना है, और जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब हमें खुद अपने लिए स्टैंड होना है तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए कोई बैठा नहीं है कि हम ये आकर हमारे लिए करेगा, तो हमें खुद अपने लिए स्टैंड लेना है।
1: और मैं यूथ को ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा अपने एल्डर से एंड अपने जो भी डिवोशनल बिलीव्स हैं उनसे कनेक्टेड रहें, और आपके पैर हमेशा ग्राउंड पे होने चाहिए और आंखें हमेशा ऊपर आसमान की तरफ देखते रहिए, और हमेशा सपने लेते रहिए और उनके लिए काम करते रहिए।
0: जी, सपने देखना भी बहुत ज़रूरी है और उनके लिए काम करना भी बहुत ज़रूरी है। ज्योति और ऐश्वर्या, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों यहाँ आए, हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए, अपने बारे में आपने हमें बताया, हमारे श्रोताओं को बताया। मैं और रेडियो विदस्ता आप दोनों के कुशल भविष्य की कामना करता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानियाँ लेकर। अभी आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे मेहमानों के पसंदीदा गीत के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे और सुनते रहे रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: जय हिंद, जय भारत।
2: जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी एक दर्पण एपिसोड 3। आज के मेहमान थे ऐश्वर्या धीमान और ज्योति बगन। प्रस्तुतकर्ता आरजे सेजल। रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार। निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता 90.0 मेगा हर्ट्ज़ ते। सुनते रहो अपने

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
3: तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: गाड़ी को भी यही पंक्चर हो रहा था।
1: हम पहुँचे तो सारी आफत चल गई बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा।
2: वाह, अरे वाह।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: ये रातें, ये मौसम।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

तो बोजान एफएम नमत आशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बात।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 एफएम रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: बाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

मेरी राम राम, जहां दूध दही का खाना योआ मेरा हरियाणा, जहां जामदे न्याणे नु सिखैदे गाना बजाना योआ मेरा हरियाणा, जहां जोड़ा के ऊपर बैठ कर नहाना योआ मेरा हरियाणा, जहां अंडिया में दाल पकाना योआ मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकाई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों के बीच में, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणे के रीति रिवाजा के बारे में। तो सुनना ना भूलियो हर शनिवार और रविवार सवेरी 7:05 पा और दोपहर नू 2 बजे सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 MHz। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता।

फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय करेंगे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आदाब।

तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक, इन मौसमों के गुम हो जाने तक, कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में दफ

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद शायद मैं अपनी बात कह पाता।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

रेडियो विदस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर विदस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 18, मोतियाबिंद ऑपरेशन, पोषण और आहार, कैटरेक्ट सर्जरी एंड न्यूट्रिशन एंड डाइट फॉर सीनियर सिटीजन। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने।
1: देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो केंद्र, 10 भाषाओं और ढेर सारी बोलियों में सुनने वाले हमारे रेडियो श्रोताओं को 17 एपिसोड सुनने के बाद जानकारी हो ही गई है कि हमारे देश के बुजुर्गों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कई योजनाएं संचालित करते हैं, जिससे हमारे बड़ों का बड़े सम्मान।
0: हाँ, क्योंकि देश के बुजुर्ग ही है देश का अभिमान, क्यों लक्ष्मी?
1: हाँ दादू, एक बार दोहरा ले कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हमारे बुजुर्गों के लिए।
0: बिल्कुल, श्रोता साथियों की यादों को भी ताजा कर दिया जाए।
1: इसमें पहला है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC, अटल वयो अभ्योदय योजना का एक घटक, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
0: दूसरा है एल्डर लाइन नंबर 14567, जिसकी सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मददों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई न कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए ही है एल्डर लाइन 14567।
1: तीसरा है जेरियाट्रिक केयरगिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्ध अवस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को पाटना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सके और साथ ही वृद्ध अवस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके।
0: चौथा, सेज यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। देश के वरिष्ठ नागरिकों के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए संचालित इस कार्यक्रम और सेज पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। SAJE यानी सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस है।
1: अगली योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने की एक योजना। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा।
0: कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम के तहत आयुष्मान भारत के माध्यम से बुजुर्गों का निशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है।
1: और भरण पोषण का अधिकार अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिकों को जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वह इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक गोद व सौतेले माता पिता भी आते हैं।
0: ये योजनाएं तो वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित है, लेकिन समय समय पर विभिन्न अवसरों पर भी मंत्रालय का ये विभाग वृद्ध जन, दिव्यांग जन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करता रहता है।
1: जैसे इन दिनों महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में भी मंत्रालय सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है।

0: बुजुर्गों के मेले में सम्मिलित होने को आसान और सुविधाजनक बना रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय संचालित कर रहा है अपना एक सुविधा स्टॉल, जहां वृद्ध जनों को मिलेगी हर तरह की सुविधा और सहायक उपकरण, साथ ही उचित सलाह भी। और साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सीनियर सिटीजन से यात्रा के दौरान कुछ सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। आप सभी ये यात्रा अकेले ना करें और किसी को अपने साथ जरूर लाएं। ज्यादा भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें और भीड़ से बचें। घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। मेले के नियमों का पालन करें। किसी असुविधा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्टॉल पर या नजदीकी सहायता अधिकारियों से संपर्क करें। महाकुंभ मेला आपके लिए सफल रहे और सुरक्षित भी, इसकी कामना के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको महाकुंभ मेले की शुभकामनाएं दे रहा है। सीआरए द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे मेरे प्यारे दादाजी, आज आपके दोस्त मिलने आ रहे हैं ना, तो उनका वेलकम करना है।
2: हाँ मेरी सुपर फास्ट पोती जी, मैं सुन रहा हूँ और अपने दोस्त सुरेश के आने की तैयारी में ही लगा हूँ।
1: अच्छा अच्छा समझी, तो कैसी तैयारी हो रही है जरा मैं भी तो जानूं। आखिर पुराने फ्रेंड से मिलने के लिए आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं?
2: लक्ष्मी तू भी ऊपर आ जा, किचन में मिल के तैयारी करते हैं, सुरेश आता ही होगा।
1: अरे मेरे दादाजी, आप किचन में क्या कर रहे हो? मुझे लगा आप खुद तैयार हो रहे हैं, आप तो यहाँ खाना तैयार कर रहे हैं।
2: हाँ मेरी सुपर पोती, आज तेरे दादू खुद ही सब तैयार कर रहे हैं। देख तो, ये रही अंकुरित मूंग के साथ सोयाबीन की फली, और ये है सुरेश का पसंदीदा पोहा, और अभी बन रहा है गाजर का हलवा।
1: अरे वाह दादाजी, इतना हेल्दी और न्यूट्रिशन फुल नाश्ता लग रहा है। आपके दोस्त फिटनेस प्रेमी हैं?
2: हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने, सुरेश फिटनेस ट्रेनर रह चुका है और अभी कई जगह पर लोगों को फिटनेस गाइडेंस भी देता है। आज वो यहाँ हमारे ओल्ड एज ग्रुप के साथ फिटनेस टिप्स देने आ रहा है।
1: क्या बात है दादू, ये ना हुई सुपर दादू वाली बात। फिटनेस तो हर उम्र में जरूरी है और हमारे ओल्ड एज ग्रुप के लिए तो बहुत जरूरी है। तो आप नाश्ता रेडी करो, मैं सारे सदस्यों को एक रिमाइंडर दे दूं।
2: हाँ हाँ, सबको रिमाइंडर में बोल दो कि सारे लोग हमारे अड्डे पर आ जाएं। नाश्ता हमारे ओर से होगा।
1: ओके दादू। अच्छा दादू, रास्ते में चलते चलते थोड़ी और बात कर लें।
2: तो बिटिया रानी किस बारे में बात करना चाहती है?
1: दादू गाड़ी चलाते समय सबसे ज्यादा हम इसका उपयोग करते हैं और ये ना रहे तो जीवन सूना सूना लगता है। बताओ बताओ जरा।
2: अब रास्ते में पहेलियां बुझाती चलेगी? अच्छा चलो, मैं तुम्हारी पहेली का चुटकी में ही जवाब दे देता हूँ। ये है हमारी आंखें।
1: वाह दादाजी, आप तो बड़े इंटेलिजेंट है। अच्छा दादाजी, बुढ़ापे में आँखों का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है।
2: हाँ लक्ष्मी, और बुढ़ापे में सबसे ज्यादा कोई बीमारी तंग करती है तो वो है मोतियाबिंद। क्या तुम मुझे मोतियाबिंद के बारे में जानकारी दे सकती हो? और साथ ही रास्ते पे चलते चलते ये भी जरा बता दो, जहाँ सरकार ने अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत आप बुजुर्गों में आम तौर पर होने वाली इस मोतियाबिंद बीमारी के इलाज के लिए कोई योजना चलाई है कि नहीं?
1: दादाजी बिल्कुल सही सवाल, आपका सवाल है करोड़ों का एक। बिल्कुल, सरकार ने अटल वयो अभ्योदय योजना के अंतर्गत मोतियाबिंद सर्जरी के लिए भी योजना बनाई है। मैं विस्तार से इस बारे में जानकारी देने के लिए आपको अपने केंद्र से प्रसारित एक प्रोग्राम हेडफोन में चलाती हूँ, बल्कि इसे ब्लूटूथ से गाड़ी के प्लेयर के साथ जोड़ देती हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो आप सुनिए, तब तक रास्ता कट जाएगा।
0: सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश।

0: देश, सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग, हमारा स्वाभिमान। सीआरए द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त निया, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना के बारे में, जो बुजुर्गों के जीवन को रोशन कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज किया जाता है, जिसमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा भी शामिल है। मोतियाबिंद, जिसे हम कैटरेक्ट कहते हैं, एक ऐसी समस्या है जिससे हमारे बुजुर्गों वर्ग को काफी दिक्कत होती है, लेकिन अब इस योजना के तहत उन्हें मिलेगी राहत और नई रोशनी। मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद या कैटरेक्ट आंखों के लेंस का धुंधला होना है। जब आंखों के लेंस पर धुआं या धुंध की परत जम जाती है, तो नजर कमजोर हो जाती है और व्यक्ति को दिखने में कठिनाई होती है। यह समस्या खासकर बुजुर्गों में आम होती है। मोतियाबिंद के कारण कई बुजुर्गों को अपनी सामान्य गतिविधियों जैसे पढ़ाई, टीवी देखना, सड़क पर चलना या छोटे मोटे काम करने में कठिनाई होती है। अब सवाल है कि मोतियाबिंद या इलाज कैसे किया जाता है? इसका इलाज आमतौर पर सर्जरी से होता है, जिसमें मोतियाबिंद के प्रभावित लेंस को हटाकर एक नया लेंस लगाया जाता है। यह एक आसान और सुरक्षित प्रक्रिया है, जिसे आजकल बहुत ही प्रभावी तरीके से किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना की भूमिका। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक अहम स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत सरकार गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा देती है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। इनमें बुजुर्गों को विशेष रूप से लाभ होता है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत मोतियाबिंद जैसी गंभीर समस्या के इलाज के लिए उन्हें मुफ्त में सर्जरी मिल रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इस ऑपरेशन की सारी लागत सरकार उठाती है और मरीज को एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। इस योजना के जरिए देश भर के सरकारी अस्पतालों और नर्सिंग होम में मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ कैसे लें? अब सवाल ये उठता है कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए। अगर आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है, तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वे आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड हो। यदि आप इस योजना के कवर नहीं हैं, तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र से जानकारी लेकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी आंखों की जांच करवा सकते हैं। डॉक्टर आपकी आंखों की स्थिति पर आकलन करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो मोतियाबिंद ऑपरेशन की सिफारिश करेंगे। सर्जरी की प्रक्रिया और लाभ। मोतियाबिंद ऑपरेशन एक बहुत ही सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया है। इसे अधिकांश मामले में लोकल एनेस्थीसिया, स्थानीय संज्ञाहरण के तहत किया जाता है, यानी कि मरीज को पूरी सर्जरी के दौरान होश रहता है, लेकिन उसे दर्द नहीं होता। इस ऑपरेशन के बाद मरीज को कुछ दिनों तक आराम की सलाह दी जाती है और फिर वह धीरे धीरे अपनी सामान्य गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। इस ऑपरेशन का लाभ यह है कि मरीज की दृष्टि वापस आ जाती है और उनका जीवन सामान्य हो जाता है। विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए यह राहत की बात है, क्योंकि अब वह बिना किसी परेशानी के अपने दिनचर्या के कार्य आसानी से कर सकते हैं। सफलता की कहानियाँ। अब हम बात करते हैं कि कुछ बुजुर्गों की सफलता की कहानियों के बारे में। इस योजना के तहत कई बुजुर्गों ने मोतियाबिंद सर्जरी करवाई और उनकी जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा आयुष्मान भारत योजना के तहत बुजुर्गों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी के बारे में। यदि आप या आपके परिवार में कोई समस्या से जूझ रहा है तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं और अपनी जिंदगी को फिर से रोशन करें। आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz और हम चाहते हैं कि हर बुजुर्ग को एक नई रोशनी मिले, क्योंकि उनकी आंखों का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और ध्यान रखें अपनी आंखों का।
2: वाह लक्ष्मी बेटा, क्या उपयोगी कार्यक्रम सुनाया तुमने। और देखो, हमारा रास्ता भी कट गया और हम पहुंच गए अपने ओल्ड एज के अड्डे पर।
0: सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहाँ उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग, हमारा स्वाभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, आप है मिस्टर सुरेश, फिट एंड फाइन। सुरेश जी, हमें भी फिट एंड फाइन रहने की सलाह देने आए हैं।
3: नमस्कार भरत और साथियों, भले ही हमारी एज ओल्ड हो, लेकिन हमें खुद को हमेशा यंग रखना है और इसके लिए जरूरी है सही डाइट और न्यूट्रिशन की सही मात्रा और योग एंड एक्सरसाइज। क्यों भरत?
4: हाँ हाँ सुरेश दादू, दादू हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, खान पान सही तो जीवन सुखी।
3: बिल्कुल ठीक, आपके दादू बिल्कुल ठीक कहते हैं लक्ष्मी। अगर हम सही पोषण लेंगे, सही खान पान करेंगे, तभी तो हम इस उम्र में अपने आप को फिट और निरोग रखेंगे। तो आप सभी हमारे साथियों में मुझे कहना है कि आप सभी सही समय पर सही खान पान, जैसे साग सब्जी, भरपूर मात्रा में प्रोटीन आयरन युक्त खाने में, साथ ही और न्यूट्रिशन से भरे हुए पोषण तत्वों को खाएं। जैसे आज मैंने भरत से कहा था, सुबह के नाश्ते में अंकुरित मूंग, सोयाबड़ी, पोहा, गाजर का हलवा, ये सारी चीजें बनाएं। आप अपने खाने को हमेशा तिरंगा रखें, यानी हरा, ऑरेंज और वाइट। क्या समझे?
2: बहुत बढ़िया सुरेश जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सबके पास इतनी सुविधा तो सबके घरों में नहीं होती है। सबके घर वाले इतना ख्याल तो रखते हैं, और हमारे ग्रुप में कई हमारे साथी आर्थिक रूप से इतने संपन्न भी नहीं है कि पोषक और संतुलित आहार ले सकें, तो उनके लिए क्या?
4: अरे सुखी दादू, इसके लिए ही तो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोषण अभियान केंद्र, सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। ये मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाता है, जिनमें से एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स है। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए चलाया जाता है।
3: वरिष्ठ नागरिकों के पोषण और आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं, खासकर उनके लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर और निर्बल हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारना है, ताकि उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। इसके लिए सरकार ने पोषण अभियान का संचालन किया है।
2: जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और पोषण तत्वों की कमी की वजह से हम जैसे बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और इस वजह से कई बीमारियां हम पर घर कर लेती है। इसलिए तो आज मैंने सुरेश को बुलाया। सुरेश हमें बताएंगे कि किस तरह से हम पूरब तत्वों को लेकर खुद को स्वस्थ और निरोगी बनाएं।
3: हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। पौष्टिक भोजन कोई बहुत महंगा भोजन तो नहीं होता। इसे हमारे आसपास के पोषक तत्व पूरा कर सकते हैं, जैसे दूध, अंडे, मौसमी सब्जियां और फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और अनाज।
4: और आज हमारे साथ एक डाइटिशियन भी है, जिनके द्वारा हम जानेंगे कि बुजुर्गों को किस तरह से अपने पोषक आहार और अपनी डाइट को मैनेज करना चाहिए। चलिए सुनते हैं उनसे भेंट वार्ता।
2: श्रीमती श्वेता शाह जी, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए संतुलित आहार की भूमिका कितनी जरूरी है?
5: खाने पीने से ही हम अपने शरीर को रेडी करते हैं
2: जी।
5: आप ज्योग्राफिकली भी अगर दूसरी तरह से भी एनालाइज करें, मोमोज हमारे कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट नहीं था
2: जी।
5: और उसके साथ वो जो बहुत तेज मिर्च और लहसुन की चटनी मिलती है वो भी नहीं था। उसका कारण क्या है कि जिस जगह से वो आया है डेलिकेसी, वहां पर कच्चा मैदा डाइजेस्ट हो जाता है, वहां की बॉडी के, वहां के जो टेम्परेचर इतने मिनिमम में रहते हैं, वहां पे बॉडी को एक्टिव रखने के लिए उनको तेज मिर्च चाहिए
2: जी।
5: लेकिन जो हमारे यहाँ के लोगों का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और यहाँ का जो रहन सहन है, उसी हिसाब से हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें इतनी तेज मिर्च खाने की जरूरत नहीं है। हमारा पेट उतना, हमारे जेनेटिकली हमारी इतनी बॉडीज अडाप्टिव नहीं है कि हम उस कच्चे मैदे को अच्छे से पचा सकें। तो हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए कि हम उन चीज़ों को कम खाएं। जितना तेज मिर्च खाएंगे, जितना मसाले तेज करेंगे, वो उतना ही आपकी बॉडी में एंजाइटी क्रिएट करेंगे, हाइपरनेस क्रिएट करेंगे। जितना ब्लैंड खाना होगा उतना ही शांत इंसान आपको दिखाई देगा।
2: यानी कि उसको हम तामसिक खाना बोल सकते हैं।
5: यही क्लासिफिकेशन इसीलिए उन्होंने बनाई है ना हमारे शास्त्रों ने, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसका कारण है। अब मान लीजिए कोई भी चीज जो तामसिक बोली गई, अब इस बारे में बात की जाए तो शायद मुझे लगता है ये बेस्ट चीज है इस बारे में बात करने की। बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी रहता है हर समय, वेजिटेरियन डाइट लें या नॉन वेजिटेरियन डाइट लें या कैसे करें। पहली चीज साइंस, बेसिक साइंस, कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट प्लांट ने कन्वर्ट किया एनर्जी को, प्लैनेट पे एनर्जी सन से ही आ रही
2: जी।
5: है, उस प्लांट फूड को अगर आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं तो आप पहली फेज पर हैं। अगर उस प्लांट को पहले डियर ने खाया, डियर से लॉयन ने खाया, तो क्या लॉयन के पास उतनी एनर्जी जाने वाली है?
2: मेरे हिसाब से नहीं,
5: बिल्कुल भी नहीं। तो जितना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उतना ही आपके अंदर मॉलिक्यूलर, जिसको हम योग की भाषा में कहें तो प्राण शक्ति क्षीण होती जाती है
2: जी जी।
5: तो अगर हम पहले तो अपने फूड को प्लांट बेस्ड रखें, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए हम क्रिलियन फोटोग्राफी की बात करते हैं, क्रिलियन फोटोग्राफी जो हमारे ऋषि मुनियों ने आमतौर से आंख बंद करके ही सब कुछ देख लेने का जो उनकी कला थी, वो अब थोड़ा साइंस ने भी अपने आप को डेवलप किया है। क्रिलियन फोटोग्राफी रहती है, एवरीबडी कैन सर्च, आप देख सकते हैं, सब गूगल पे आपको मिलेगा
2: जी।
5: तो अगर आप उसकी पिक्चर्स देखें तो एक रॉ फूड की, जो अगर आप एप्पल काटें या कोई भी फ्रूट काटें या कोई भी ऐसा रॉ फूड जो आप सीधा खाने वाले हैं, उसके अराउंड में एक वॉयलेट एनर्जी का लाइन दिखता है,
2: ठीक है,
5: जो फुल्ली स्पार्कलिंग रहता है, फुल ऑफ एनर्जी,
2: ठीक है।
5: वही अगर आप लोफ ऑफ मीट में देखेंगे, यू विल फाइंड हार्डली एनी एनर्जी।
6: ओके,
5: हार्डली एनी एनर्जी. तो आप कर क्या रहे हैं, सिर्फ जुबान का स्वाद ले रहे हैं, खाना तो जा नहीं रहा अंदर. दूसरी बात आती है फ्रिज में रखा हुआ खाना
6: जी.
5: 40 मिनट्स के बाद खाने की वैल्यू, जो हमारा जो यूनिवर्स को समझाने की जो बेसिक हमारा सनातन का तरीका है, कथाओं से शिव तत्व जो है वो तोड़ने का तत्व है, तो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जो साइंस कहता है डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है. तो जो फूड की जो एथिक वैल्यू है, जो उसमें गुणवत्ता थी, प्राण शक्ति थी, वो घट गई. और दो दिन बाद आप फ्रिज से निकाल के खा रहे हैं, 6 दिन बाद निकाल करके खा रहे हैं, तो वो इट इज यूजलेस, उसमें कुछ है ही नहीं.
6: न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उसकी खत्म हो गई. आपका कहने का मतलब है कि हम जो भी कुछ खाएं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा होना जरूरी है.
3: डॉक्टर साहब की बताई हुई बातें तो काफी अच्छी हैं, लेकिन सवाल यह उठता है भरत कि आखिर हम कैसे इन सारी सुविधाओं को खुद के लिए प्राप्त कर सके, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं कि सुविधाएं मुहैया कराएं, और ना ही हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं.
6: बिल्कुल.
4: तो अब हमारे मुख्य सवाल का जवाब हम देते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर और निर्बल है वो क्या करें. जैसा आप जानते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाता है, जिनमें से एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स है. ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए चलाया जाता है. वरिष्ठ नागरिकों को पोषण और आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है. पोषण अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों में पोषण की कमी को दूर करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बुजुर्गों का पोषण स्तर निम्न पाया गया है. अध्ययन से पता चला कि कम पोषण के कारण बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है. ऐसे अभियान का उद्देश्य निर्बल बुजुर्गों को प्रतिदिन एक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, जिससे उनकी जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि हो सके.
6: जी हाँ साथी, लक्ष्मी ने बिल्कुल सही कहा. इसके अलावा संतुलित आहार की व्यवस्था भी है. पोषक अभियान के तहत बुजुर्गों को संतुलित खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाते हैं. स्थानीय रूप से उपलब्ध फल, स्थानीय सब्जियां, विशेष रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, दालें और अनाज से ये सभी तत्व बुजुर्गों की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चयनित किए गए हैं, ताकि वे स्वस्थ और पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकें.
4: इस योजना के अंतर्गत भोजन तैयार करने में स्थायी स्तर पर उपलब्ध स्वस्थ खाद्य सामग्रियों का उपयोग करने पर जोर दिया गया है, ताकि उन्हें गर्म ताज़ा भोजन मध्याह्न भोजन के रूप में दिया जा सके. इससे बुजुर्गों को आसानी से पौष्टिक भोजन मिल सकेगा और ये स्थानीय किसानों के लिए भी फायदेमंद होगा.
6: और तो और, इस योजना के तहत हर बुजुर्ग के लिए प्रतिदिन 20 रुपए का भत्ता निर्धारित किया गया है. इसमें प्रशासनिक खर्चा भी शामिल है. इस राशि का उपयोग स्थानीय खाद्य सामग्री की खरीद और भोजन वितरण में किया जाता है.
3: वाह क्या बात है, अब तो हम सारे ओल्ड इज गोल्ड एज बनेंगे. जब अटल वायु अभ्युदय योजना से पोषण पाकर सेकंड इनिंग में फ्रंट फुट पे खेलेंगे.
6: हाँ सुरेश हाँ, सब होंगे फिट तो बुढ़ापा हो जाएगा हिट. हमारे बड़े और बुजुर्ग साथियों, अच्छा खाइए, स्वस्थ भोजन, रहिए फिट, तभी तो सेकंड इनिंग होगी सुपर हिट.
4: तो देश भर के बुजुर्गों के फिट बनने रहने की कामना के साथ आज के इस अंक से हमको दीजिए अनुमति. जल्दी ही फिर मिलते हैं आपसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्योदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम के 19वें एपिसोड के साथ. नमस्कार.
6: नमस्कार.
4: सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे बड़े और बुजुर्ग खाएं, अच्छा खाएं, स्वस्थ भोजन, रहिए फिट, तभी तो सेकंड इनिंग होगी सुपर हिट.
6: बात तो सही है, पर हमारे ऐसे बुजुर्गों का क्या, जो है आर्थिक रूप से कमजोर, जिनसे है पोषण बड़ी दूर.
4: अरे भाई, भारत सरकार ले आई है अटल अभ्योदय योजना का बुजुर्ग पोषण अभियान। अब ना रहेगा कोई भी मजबूर, सबको मिलेगा पोषण भरपूर।
2: कैसे कैसे?
4: वो ऐसे पोषण अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों में पोषण की कमी को दूर करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बुजुर्गों का पोषण सत्र निम्न पाया गया। अध्ययन से पता चला कि कम पोषण के कारण बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे अभियान का उद्देश्य निर्बल बुजुर्गों को प्रतिदिन एक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, जिससे उनकी जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि हो सके।
6: हाँ, और बुजुर्गों के लिए लोकली उपलब्ध फल सब्जी दालें आदि उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही रोज का भोजन भत्ता 20 रुपए निर्धारित है।
4: इससे समुदाय आधारित संगठनों जैसे कि गांवों के बुजुर्ग के स्वयं सहायता समूह NRLM के तहत गठित स्वयं सहायता समूह, आंगनवाड़ी केंद्रों और गांवों में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग भी लिए जाएंगे।
6: तो हो गया ना सबके फिट और बुढ़ापे के हिट बनाने का इंतजाम।
4: तो बढ़ेगा हमारे बड़ों का स्वास्थ्य और उनका सम्मान,
6: क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन संगठन के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 18, मोतियाबिंद ऑपरेशन, पोषण और आहार, यानी कैटरेक्ट सर्जरी एंड न्यूट्रिशन एंड डाइट ऑफ सीनियर सिटीजन। इस एपिसोड में लक्ष्मी के किरदार को आवाज दी RJ किरनी ने, भरत दद्दू के किरदार को आवाज दी भारत सोपोरी ने, सुरेश के किरदार को आवाज दी राहुल अल्यान ने। आपने इस एपिसोड में वॉइस नोट सुना था, उसमें आवाज दी निया जैन ने। इस एपिसोड में आपने बुजुर्गों के लिए एक डाइटिशियन की आवाज सुनी, उनको बहुत बहुत आभार। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट एवं निर्देशित किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ, मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब ए गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

0: Amore mio, dove sai tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641301 पर।
1: वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِد اَستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: है
1: आशिक।
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: You are listening FM 90.0 MHz, Radio Vidasta, Hamsafar, Zindagi Ka. पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। आज के कलाकार हैं पार्श्व गायक किशोर कुमार। प्रस्तुत करेंगे आरजे किडनी।

जिंदगी के अनजाने सफर से बेहद प्यार करने वाले हिंदी सिनेमा जगत के महान असाधारण और मधुर आवाज वाले कलाकार पर आधारित है आज का प्रोग्राम सुनहरे पल। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। किशोर कुमार का रुझान बचपन से ही संगीत की ओर था। महान अभिनेता एवं गायक केएल सहगल के गानों से प्रभावित किशोर कुमार की तरह ही गायक बनना चाहते थे। सहगल से मिलने की चाह लिए किशोर कुमार 18 वर्ष की उम्र में मुंबई पहुंचे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी न हो पाई। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार बतौर अभिनेता अपनी पहचान बना चुके थे और वो चाहते थे किशोर कुमार भी अभिनेता बने, मगर किशोर कुमार को अदाकारी के बजाय प्लेबैक गायक बनने की चाह थी।

0: बतौर गायक उन्होंने वर्ष 1948 में देवानंद की फिल्म जिद्दी में सहगल की अंदाज में गाने का मौका मिला। फिल्म लड़की बतौर अभिनेता उनके कैरियर की पहली हिट फिल्म थी। उन्होंने कई फिल्मों दूर गगन की छाँव में, दूर का राही, चलती का नाम जिंदगी जैसे फिल्मों का निर्देशन भी किया।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: किशोर कुमार को ईश्वर ने बहु प्रतिभा से नवाजा था। वह एक अच्छे सिंगर तो थे ही, साथ ही अभिनय में भी पीछे नहीं थी। इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात थी कि वो महिला गायक की आवाज में भी गा सकती थी। साल 1962 की फिल्म हाफ टिकट का गीत आके सीधी लगी दिल पे जैसी को किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गाना गाया। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने इस गाने को एक बार में ही रिकॉर्ड कर लिया गया और ये गाना सुपरहिट साबित हुआ।
2: के सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय।

0: सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया।
3: किशोर कुमार ने कई हिट फिल्में देकर अपने अभिनय की अलग छाप छोड़ी। 1957 में आशा, 1958 में चलती का नाम गाड़ी, 1968 में पड़ोसन जैसे फिल्में दे दी। किशोर कुमार को 8 बार बतौर गायक फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले किशोर कुमार को आराधना फिल्म के गीत रूप तेरा मस्ताना के लिए वर्ष 1969 में बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था।

किशोर कुमार को अपने आप को लोगों के सामने दर्शाने का अलग ही तरीका था। किशोर कुमार जब भी लोगों के सामने जाते थे तब वह अपने आप को किशोर कुमार खंडवा वाले कहते थे। किशोर कुमार जब इंदौर के कॉलेज में पढ़ते थे तब वह अपने कॉलेज की कैंटीन में उधार सामान लिया करते थे और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। एक बार जब कैंटीन मालिक ने उससे अपने 5 रुपए और 12 आना मांगे तो वह कैंटीन में बैठकर 5 रुपए और 12 आना गीत गाते और कैंटीन वालों की बात ही न सुनते थे, लेकिन बाद में ये गाना 5 रुपए और 12 आना काफी हिट हुआ था।

तेरी गजरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गजरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा

0: बताया जाता है कि किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा था बिवियर ऑफ किशोर। इससे जुड़ा एक किस्सा भी चर्चित है कि जब निर्माता निर्देशक एचएस रवेल उनके घर में उनसे मिलकर बाहर निकल रहे थे तभी किशोर कुमार ने उसके हाथ पर काट लिया।
1: हम थे वो थी हम थे।

दोनों के दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह। हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

0: याने प्यार हो गया।
1: बताया जाता है कि किशोर कुमार बहुत ही मूडी किस्म के इंसान थे। जब उनका मन होता वो एक बार में गाना रिकॉर्ड कर लिया करते थे, लेकिन मन न होने पर कितने भी पैसे दिए जाए वो नहीं गाया करते थे। एक दिलचस्प किस्सा बताया जाता है कि उन्होंने एक बार दोस्त से कहा कि देख, जब हम मरने वाले होंगे तब सारा पैसा अपनी छाती पर बांध लेंगे, तब मरेंगे।

किशोर कुमार की कल्पना की उड़ान भी बेहद अलग थी। अपने घर को लेकर उनका एक अलग सपना था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर पर एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी ही पानी हो। वह ये भी चाहते थे कि उनके पलंग के पास एक नाव हो जिस पर बैठकर वो डाइनिंग हॉल तक जा सके। हालांकि उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया।

किशोर कुमार ने कई अभिनेताओं को अपनी आवाज दी, लेकिन कुछ मौकों पर मोहम्मद रफी ने उनके लिए गीत गाए। इन गीतों में हमें चले हो कहां करके जी बेकरार, बागम बाग, मन बावरा, निस दिन जाए, रागनी है दास्तान तेरी ये जिंदगी, शरारत और आदत है सबको सलाम करना और प्यार दीवाना शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद रफी किशोर कुमार के लिए गीत गाने के वास्ते महज 1 रुपया परिश्रमिक लिया करते थे।

किशोर कुमार को अपने करियर में वो दौर भी देखना पड़ा जब उन्हें फिल्मों में काम ही नहीं मिलता था, तब वे स्टेज पर कार्यक्रम पेश करके अपना जीवन यापन करने को मजबूर थे। मुंबई में आयोजित एक ऐसे ही स्टेज कार्यक्रम के दौरान संगीतकार ओपी नायर ने जब उनका गाना सुना तो उनसे प्रभावित होकर कहा, महान प्रतिभाएं तो अक्सर जन्म लेती रहती है, लेकिन किशोर कुमार जैसा पार्श्व गायक हजार वर्ष में केवल एक ही बार जन्म लेता है। उनके इस कथन का उनके साथ बैठी पार्श्व गायिका आशा भोसले ने भी समर्थन किया।

वर्ष 1987 में किशोर कुमार ने निर्णय लिया कि वो फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वापस अपने गांव खंडवा लौट जाएंगे। वह अक्सर कहा करते थे कि दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे, लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। उन्हें 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना जी के लिए बहुत गाने गाए। इनकी मृत्यु पर राजेश खन्ना ने कहा था कि मेरी आवाज चली गई।

0: जाते।
1: किशोर कुमार जैसे सदाबहार कलाकार कभी विदाई नहीं लेते, कभी अलविदा नहीं कहते। वे अपने निस्वार्थ योगदान के कारण हमारे दिलों में जीवित हैं। वे चिरस्थायी और कालजयी है और उनके गीत थके हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करना कभी नहीं छोड़ते।

0: है।
1: इसके साथ ही इस कार्यक्रम का ये अंक समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ और अगले अंक में किसी और हस्ती के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का कार्यक्रम पार्श्व गायक किशोर कुमार पर आधारित था। कार्यक्रम को पेश किया आरजे किरने ने। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोफोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

वो देखो चांद निकल आया है, शायद जमीन पे उतरने का इरादा है। हमारी राहें मुनव्वर होंगी, अंधेरे अब दूर हो जाएंगे। अब रोशन होगा यह जहां और हम ढूंढेंगे वो चेहरे जो गुम हो गए थे बरसों पहले।

चांदनी रातों के बाद एक ऐसी ही सुबह का इंतजार रहता है जो मेरे लिए गुलाबी सुबह बन जाए। आओ आओ तुम्हें इन बर्फीली हवाओं का एहसास कराएं। चल मेरे साथ कोहसारू के उस पार जहां पल भर के लिए अब मर जाएं।

चुपके चुपके तुम्हें निहारता रहा देर तक। मेरे आगोश में कभी पनाह तो लीजिए जरा, शायद सिमट जाए इस शब की तन्हाई।

खुशबू का एहसास दिलाती हो और छोड़ जाती हो वीरान पत्थरों की बस्ती में। इकरार भी करते हो और लौट के आते भी नहीं हो, चंद फासले ही दरमियां, पर फिर भी दूरियां मिटती नहीं।

वो जो पीछे छोड़ आए सतरंगी दुनिया, भला उसे याद करने की जरूरत ही क्या? पर उसे आप दिल के निहाखानों में महफूज तो रख सकते हैं।

मौसमों का बदलना अपनी जगह सही है, और यही वजह है तभी शायद कायनात का संतुलन बरकरार है। अब जरा आप महसूस करिए मौसम बहार की आमद। हवाओं में ताजगी कहीं से गिरते आबशारों से निकलता मधुर संगीत, और मुसाफिर चलते जीनत बनाते पगडंडियों की कच्ची फिसलती रेत पे अपना रास्ता बनाते राही हमराही के संग मंजिल की तलाश में बेपरवाह होकर यही सोच लिए छू जाएंगे अब

0: दोस्त, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आज के कार्यक्रम से इजाजत। नमस्ते
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आज के हमारे प्रसारण। ये रेडियो वितस्ता प्रसारण करता है अंबाला छावनी से, और अंबाला छावनी के लिए इसको स्वीकृत किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। ये सामुदायिक रेडियो अंबाला के लिए और अंबाला की बात करता है। बात वो करता है जो रखती हो आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 2 सेकंड। श्रोताओं, 90.0 मेगाहर्ट्ज पर यह है आपका अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो वितस्ता। समय की सुइयां इशारा कर रही है कि अब हमें आज के इस सुरीले और ज्ञानवर्धक सफर को यहीं पर विराम देना होगा। दिन भर गूंजे सुरों और बातों के बाद अब वक्त है आपसे विदा लेने का। लेकिन हमेशा की तरह विदा लेने से पहले रुक करते हैं देश के एक खूबसूरत कोने की ओर, जहां आज संस्कृति का एक अनूठा रंग बिखरा हुआ है। मेघालय का पावन भेदन खलम फेस्टिवल। आज हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय एक बेहद अद्भुत और जीवंत रंग में सराबोर है। यहां के स्थानीय पनार समुदाय द्वारा आज उनका सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक और रंगीन सांस्कृतिक त्योहार भेदेन खलम फेस्टिवल पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार मुख्य रूप से कृषि और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। पनार समुदाय के लोग इस दिन खेतों में बुआई के बाद अच्छी फसल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, साथ ही समाज से सभी प्रकार की बीमारियों, दुखों और बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस उत्सव के दौरान युवा रंग बिरंगे रथों, जिन्हें रॉड्स कहा जाता है, के साथ पारंपरिक संगीत और ढोल की थाप पर झूमते हैं। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें प्रकृति के कितने गहराई से जुड़ी हैं। रेडियो वितस्ता की ओर से मेघालय के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज का सफर बेहद खूबसूरत रहा। यादों के इन लम्हों को समेटते हुए और कल फिर एक नई सुबह, नई ऊर्जा, नई उम्मीदों के साथ मिलने के वादे के साथ आज की इस खूबसूरत शाम और आज के इस सफर को आइए समेटते हैं वितस्ता के नाम इस प्यारी सी शायरी के साथ। आज की पंक्तियां यूं है, हवाओं में गुले रहेंगे ये सुर ये तराने कल सुबह तक। हवाओं में गुले रहेंगे ये सुर ये तराने कल सुबह तक। दिलों में जगाए रखिए चाहतों का दिया हर लम्हा हर पल। बहती रहेगी यूं ही वितस्ता बनकर सुरों की अविरल धारा। बहती रहेगी यूं ही वितस्ता बनकर सुरों की अविरल धारा। इसी मोड पर हम फिर मिलेंगे लेकर यादों का एक नया कारमा। जी हां दोस्तों, मिलेंगे इसी जगह पर। और यह था आज का विषय और आज की पंक्तियां। और जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो ये है। सभा की शुरुआत 5:58 पर सुबह वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और साथ में पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत और 7:05 पर होगा कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 10। ये रविंदर जैन पर तैयार किया गया कार्यक्रम है। पेश करेंगे आरजे किरनी और 8:30 रंगमंच की ओर एपिसोड 3 आप सुनेंगे और पेश करेंगे मानव मेहरा। 9:30 रेट्रो हिट्स एपिसोड 4 शीर्षक होगा विश्वास, पेश करेंगे आरजे किरणी, और 10:20 पर होगा कार्यक्रम परिचर्चा एपिसोड कैसर सिस्टर्स के साथ। कल शुक्रवार है, कल आपको ध्यान रहता है और याद भी रहता है और इंतजार भी, अपनी फरमाइशों की गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। कल 2:00 हम आपके लिए ला रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो आपकी फरमाइशों पर आधारित है। 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, और 7:00 रेट्रो हिट्स एपिसोड 8 शीर्षक होगा रात, पेश करेंगे आरजे किरणी, और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मरहटा। कल की कड़ी है फिजा रिबर्थ। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों का साथ ऐसे ही देते रहेंगे और अपना फीडबैक भी भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इन्हीं भावनाओं के साथ आपसे लेता हूं इजाजत। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनों के साथ मुस्कुराते रहें। भारत सोपोरी की ओर से शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।